खिष्ट सिधे का दिगु ज्याया माध्यम परमेश्वर छित जित योग्य नाधि मत न्यागु अध्याय झिन्यागु झिनखुगु पत्के ढाटगुदु मत ज्याका सुनान तोफुया तै मुखु बरु कोठा न्यङ्क ज खेमा धका ट्वादे या त तया तै छिपिन मनुदेगु न्युहने थथे हे थिना छोने फेमा अले जक्क छिङस यागु बालागु ज्याख मनु त्यस खने अले स्वर्गीय चुना दिम परमेश्वर या त इम्स त धङ्गी यपिनियनमेपि परमेश्वर झिगु बारे छु दाल धकाजी सोषणायामा झिगु सहर व नगरे तस्क सतके न्यासी बुने बोले झिस थ त मेपिन त खने फैगु ज धका दाबियामा गर्व व साहस लिसे झिस निहोने मुना झिगु समुदाय मनु त झिगु ज च्याकेमा झि घमण्डी व अहंकारी जुगुने मुखो तर झिस शिवगुने परमेश्वर झि त द्वित देखु गुख गुखे स्वर्गीय चम झि अभुयात प्रशंसा यै अले वे कया माध्यम झिस मेपिने गु नीति भिङ्गु ज्याया वे यै एफिसी निगु अध्याय झिगु पत्के हटाउदु छा दासा झिपे भिङ्गु ज्याया नीति ख्रिस्ट यशु पाखे सृष्टि याना त पि वे कया लाया सिप ख वे कल नापा निसे देखा तकु भिङ्गु ज्या झिगु पाखे जी फेमा धका चित तयार याना दिगु ख यो पिनियन मिपि परमेश्वर छित देखु गु निपुण कलाया बालागु टुक्रा ख वो दक्ले तदम कलाकार ख अले झि वे कया सृष्टि ख छि सुख धका गब्रे लज्जित जुई मते छा दासा परमेश्वर छि नाप लज्जित जुई मुखो वैकल छित मतिना याना दि अले वैकल छि संसारे खने देख थगु मतिना किनेमा धका इच्छा याना दि थमयागु वचन येना दिगुने छि सकसित न परमेश्वर स्वाभिमा जय मसी नकतिनी हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना झिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ झिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुबा परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसीह।

0: Hello, and Jay Massey. Now you are listening to Good News FM 105.1 MHz Stereo Sound, the voice of the Lord.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ विभिन्न अंग्रेजी वर्जन गीतहरू।